समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

0: श्रोते हो, आपण ऐकत आहात भक्ती सुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
2: श्रोताओं अब सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी और पंडित भीमसेन जोशी जी ने।

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

श्रोताओं सुनते हैं मुरली मनोहर स्वरूप जी के संगीत निर्देशन में एक भक्ति रचना। गीत और स्वर है हरिओम शरण जी का।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

श्रोते हो आत्ताच आपण ऐकलेत आदिश्री शंकराचार्य कृत निर्वाण षटकम यावर निरूपणात्मक मालिका। निरूपणकार होते श्री अर्जुन होलिया। प्रस्तुती भक्ती सुधा।

0: श्रोतेहो, आपण ऐकत आहात भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
2: श्रोताओं, अब सुनते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है श्रीनिवास खड़े जी ने और गाया है लता मंगेशकर जी और पंडित भीमसेन जोशी जी ने।

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना। इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

श्रोताओं, अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।